पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मिलो हो, गुर नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लै लाहा, हर हर हर हर भगत।

कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गवाहा। मैं को तार कृपा मिलिए, गुरदाते हर नानक भगत अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लै लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा। गुरमत पंच दूत बस आवह, मन तन हर अमाहा राम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लै लाहा। दीन दयाल कृपा कर माधो, हर हर नाम अमाहा राम। जप जगदीश जपो मन माहा, हर हर जगनाथ जग लाहा। तन तन बड़े ठाकर प्रभ मेरे, जप नानक भगत अमाहा।

ही आप वाप वरतै, आपे नाम उमाहाराम, आपे दीप लो पिदीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाए, जप नाम रतन उमाहाराम, सखी मिलो मिल गुण गवाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमाहाराम। आपे वरदाना बड़साहा, गुरमुख पूंजी नाम बसाहा, हर हर दात करो प्रा पावे, गुण नानक नाम उमाहाराम। जय श्री महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख बेसाहा, हर हर कृपा तार मधसूदन, मिल सत संग उमाहाराम। हर गुण बाणी सरवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा, हर हर नाम ना पूजे पुजाहा, हर हर तुल तोल अत पारी, गुरमत जप उमाहाराम।

सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलबिख मैल पाप तवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम अमाहा राम। जय श्री महला पंजवां। घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए किरपाल सोई विदगुजे, ताकि निर्मल रीत। रहाओ मात पिता बिनता सुत बंतप, इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा, मनोरंजन की माया, हाँ हाँ करत बिहानी अवद है, तह मैं संतोख न पाया। हस्त रथ असव पवन तेज तनी, पूम चतरंगा, संग न चालियो इन वे कछुए, उठ सदायो नांगा। हर के संत प्रह प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाय, नानक यहाँ सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाई है। जय श्री महला पंजवां। घर तीजा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देहो संदेसरो कहियो प्रह कहियो, विषम पई मैं बहुविध सुनते, कहो सुहागन सहियो। रहाओ कोह कह तो सब बाहर, बाहर को कह तो सब महियो, बरना दिसे चैन न लखिए, सुहागन शांत बजइयो। सर्वन वासी कट कट वासी, लेप नहीं अलपइयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसियो। जय श्री महला पंजवां। तीरो सुन तीरो प्रभ को, रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेक प्रभ को नीरो, बेस मार बेअंत बड़ दाता, मने गहीरो पेक प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन बसिया, दुख न कबहूं चूरो, बुझ प्रभ को। जय श्री महला पंजवां। लोड़ी दा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट दिसे बसेरा। रहाओ

मानो सगरो एहो संसारा रहाओ, जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहीं तह पारा। सो स्वामी तुम निकट पहचानो, रूप पेकते न्यारा। पावन नाम जगत मैं हर को कभू नाहीं संपारा। नानक शरण परियो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पांजवा शांत कर पहला, एक ओंकार

संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। तिस मोन लाल प्यारे हों फिरो खो जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रै रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जै। प्रभ सिओ मन लीना ज्यों जल मीना चातरक जिवेत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। जार वे प्रै हब्बे सखियां मुँह कही ना जेहियां। जार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चतेहियां। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग विलासा। तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिनी मैडा लाल रिचाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कहे सुन बिनो सुहागन मुँह दस तिखा पिर कहिया। जार वे पिर आपन पाणा किश निसी शंदा। जार वे तै राव्या लालन मुँह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जैतन पाग मथाने। बाहां पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किश सहंदा। जा नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा। जार वे नित सुख सकेंदी सा मैं पाई। बर लोड़ी दा आया बजी बाद आई। महा मंगल रहस थिया पिर दयाल सद नव रंगिया। बड़ पाग पाया गुर मलाया साध कै सत संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रै अंक अंक मलाई। बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जैत श्री महला पंजवा कर दूजा शांत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक ऊचा अगम पार प्रभ कथन न जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति राखण को समरथ। शांत ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। केते गुणो असंख अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूली है। मोह मगन बकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार विखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारोहो काढ़ पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊचा।

दर सोहन कीरत गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी ताव दे एक मूल न बुझन आपना अनहोंदा आप गणाएं दे हांटा डीका नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे।

तमस्त किलाइया कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग से आइया फालते वे हो पाइया जे वे ही कार कमाइया जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइया मात थोड़ी सेव गवाइया मात थोड़ी सेव।

कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चिंदया सो फल।

अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे वड्याइयां आपे ही कर्म कराइंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदा लाइंदा नदर उपठी जे करे सरताना का।

हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख मैलत मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जर आई।

बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी।

कह कुई राम ऐसे जान्या, ताना नाद ठाकुर मन मान्या, राह गुण बाणी नाम देव जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेध जगने तुला परख दाने, असमेध जगने तुला पुरख दाने, राग सुनाने थाना पूजा हर कीर्तनामा, अपने राम भजरे मन आलसिया रहाओ, गया पिंड भरता बनार सस बसता, मुख भेद चतुर पड़ता, सकल धर्म चिता कुर ज्ञान इंदी दृढ़ता, खट कर्म सहित रहता, सिवा सक संभादं मन छोट छोट सकल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं भजनामा तरस भव सिंधं, गोंड नाथ प्रमे जय सिमर गाय, प्राण दजेवा को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छा राम छोट चित अंत न बेरो, रहो जमीना हेरा पशुहारा, सोना गढ़ते हेरा सुनारा, जय बखई हेरा पर नारी, खोडा डार तेरा जुआरी, जय जय देखो तय तय रामा, हर के चरण त्या भय नामा गुण, मोको तार ले रामा तार ले, मैं जान जन तर भी न जानो, भाव पीठला बांध ही रहो, नरते सुर हो जात निमुख में, सगुरु बुद्ध सिगलाई, नरते सुरु को जी

बिन मीन तलवे ऐसे राम नामा बिन बापुरु नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा झूठला थन चोकता मखन कूटला हम देव नारायण पाया कुर पेट तलख लखाया जैसे बिखाहित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापुरु नामा रागुण बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसादम हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लय उत्तम तरमा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की ना करी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाग जरे पुराण अजय मलकी बकुंठ दान सुह पढ़ाओ तो गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल कतनी कपट परी सिमरन द्रोपद सोत उदरी गौतम सती शिला निस्तरी केसी कांशु मथरंजन किया जी धन काली को दिया प्रणव नामा है सो हरि जा जात भय अवधा टरी गौण।

पूजा कर नरसन हर हो अवतर तू कहे याद भवानी मुक्ति भरिया कांज बानी गुरमत राम नाम गौ मीता प्रणव नाम आयो कह गीता बिलावल गोंड आज नामे बीटल देखिया मूरू का समझाऊ रे रा पांडे तुमरी गायत्री लोधे का गे दिखाती थी लेकर डेंगा टकरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुम राम आदेव थोड़े मल चढ़िया आप देखा था मोदी के करखाना पाका हुआ का लड़का मारिया था पांडे तुम्हारा रामचंद सो पी आप तो देखा था रावण से ती सर्व रोई घर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहते ज्ञानी सियाणा हिंदू पूजा देवरा मुसलमान मसीत नामे सोई से ब्याह जे देवरा नाम सीत रागोंट बाणी रविदास जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मुकंद मुकंद जब संसार बिन मुकंद तन होए और सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवको सदा आनंदे रहो मुकंद मुकंद हमारे प्राणम जा मुकंद मस्तक निशानम से मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी एक मुकंद करे पुकार हमरा कहाँ करे संसार मिट्टी जात हुए दरबार तुई मुकंद जो जुगतार जो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपाली ने किरदास करो दास अब तृष्णा चूकी जब मुकंद सेवा ताऊ की गोंड जे उठता ठर तीर्थ नावे ज्यो द्वार सिरा पूजावे ज्यो कूट कूप तटा देवावे कर निंद सब वृथा जावे साध का निंद कैसे तरह सर पर जानो नर की पर रहा ज्यो ग्रहण करा कुल खेत अर्पना श्रृंगार समेत सगली सिमृत सुरवी सुन कर निंद कवन निगुन देव अनक प्रसाद कर आवे ऊं दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बराना संड कर निंद बोझूनी हंड निंदा कहाँ करो संसारा निंद का प्रगट पारा निंद को सो साध विचारिया करो दास पापी नरक सिधारिया राम करी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुर निरभो निर्वैर उकार मूर्त अजूनी।

न जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान प्रसन्न प्रभु तेरी कर कृपा लाखो मेरी लाज पते रहो कबू जीड़ा ऊ चढ़ता है काबू जाए प्याले लोगी जीड़ा तिरन रहता है चारे कुंडा पाले भर लिखाए मंडल में आए जीवन साजा माई एक चले हम देख स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसी बापना।

हर काम है लो पारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा, राम करी महल्ला पांचवा, पवो चरणा तले उपरे आवो, ऐसी से कुमावो, आप सही ऊपर सब जानो, तो दरगा सुख पावो, संतो ऐसी कदो कहानी, स्वर पवित्र नर दे पवित्रा, फिर बोलो गुरमुख बाणी रहाओ, प्रपंच छोड़ सहज कर बैठो, प्रपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुरु मिलो न वह निध पाओ, इनमें तत्व मिलोई, परम चुकावो गुरमुख ले बुलावो, आत्म चीनो पाई, निर कर जानो सदा प्रभाजर, केसों करो बुराई, सतगुरु मिलया मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, तन तन से जन जिनी कल मैं हर पाया, तन नानक सतगुरु बानी, राम करी महला पांचवा, आवत हरखन जावत दुखा, न व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुरु पूरा पाया, तो उतरी सगल बेयोगनी, ये विद है मन जोगनी, वो सोग रोग लोग न व्यापै, ते हर हर हर रस भोगनी राव, स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, प्यार पवित्र है लोगनी, आज्ञा करी सदा सुख पुंचै, जगत पेखो हर गुनी, न शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह कर नहीं मेदनी, सतगुर जो कथा निवासा, जय अवगत नाथ अगुंतनी, तन मन हर का धन सब हर का, हर के गुण हों क्या गनी, कह नानक हम तुम घोर खोई है, अंब मिलोगनी, राम कली महला पंजमा, त्रैगुण रत रह निरहरी, साधक सिद्ध न जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुरु कह खजाना, आचार्य कुछ कहना जाई, पात गोचर पाई रहाओ, हो नाई कुछ करना जो का, क्या को कह सुनावे, कथन कहण को सो जी नाई, जो भुखा तुझ बने आवे, सो ही जाना करना हारा, कीता क्या बेचारा, अपनी कथम ते आपे जाना, अरे आपे पूर भंडारा, ऐसा रस अमृत मन जाग्या, तृप्त रहे आगाई, कौन हरक मेरी आसा पूरी, सतगुरु की शरण आई, राम करी महला पांचवा, अंगीकार क्रिया प्रभु अपने, बैरी सगले साधे, जिन बैरी है ये जग लुटिया, ते बैरी लै बाधे, सतगुर परमेश्वर मूरा, सतगुरु परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रसमाणी, नाम जपी परवासा तेरा राव, चीतना आपस दूजी बाता, श्री उपर रखवारा, बेपरवार है स्वामी, एक नाम कया दारा, पूर्ण हो मिले सुखदाई, ऊन काही बाता, तत् सार परम पद पाया, चोड़ न कतूं जाता, भर न साखो जा सा तू है, साचे लख बारा, अतुल थाड़ और स्वामी, नानक खसम मारा, राम करी महला पांचवा, तू दाना तू अवचर तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोर कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती, एका एका एक तू ही, एका एका तू राया, तो कृपा ते सुख पाया राव, तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देव तिल शंख न मानो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेलें सब लाल लडावे, तुम सतगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरा ए संपूर्ण, हम भी संग अगाए, मिलत मिल रहा, नानक कहण जाए, राम करी महला पांचवा, कर कल तार पखाव जनैनो, माता बजार बाबा, करनो माद मासरी बाजा, जेवा तुने आगाजा, नित करे कर मनुआ नाचा, आने घूंगर साजा, राम को निर्तकारी, वेखा बिकण हार दयाला, जेता साई शिंगारी राव, उखार मंडली तरण सवाई, उपर गगन चंदुआ, पवन विचोला करते केला, जलते उपत हुआ, पांच तत् कर पुत्रा कीना, कृत मिलावा हुआ, चंद सूर जो जल चिरागा, चौगुण पीतर राके, दस पातो पांच संगीता, दस पातो पांच संगीता, एक पीतर साते, भिन भिन हुए भाव दिखावे, सबो निरारी पाके, कर कर नृत हुआ दिन राती, कटकड़ वाजा तूरा, एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक सो बहुर नाचे, जिस गुर भेटे पूरा,

सेवा एक उंगर ते जापे भलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ चूड़ माया के तंद सुहाओ रहाओ पांच बजेत्र करे संतोखा सासुरा लै चाल बाजा मान तान तज ताना पावन बींगा काल फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द मन पाल नर दिनर हर जान हदूरे घुंगर खड़ते आग विसूरे सहज नाम दिखावे पावे ये निरकारी जन्म न आवे जे को अपने ठाकुर पावे कोट माधे कीर्तन गावे सह संत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम करी महला पांचवा कोई बोला राम राम कोई खुदाए कोई सेवा गुसैया कोई अल्लाह कारण करण करीम कृपा ता रहीम रहो कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर नवाए कोई पढ़ा वेद कोई कदेव कोई उड़ा नील कोई सफेद कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू कोई वंश पिस कोई सुर्ग हिंदू कहो नानक जिन हुक्म भेजाता प्रभु साहब का तिन भेजाता राम कली महला पांचवा पवना मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोवण हर की कवन टेक कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म गानी मिल करो बिचारा ये तो चलत पया रहा अगली किस खबर न पाई रोवण हार पे उठ सदाई परम होके बांधे बंद सुन भया पकड़ाए अंध ये तो रच रचया करतार आपत जावत हो कुंपार न को मुआ न मरना जो न मिन साहब नाशी हो जो ये जानो सोए नाए जानन हारे कोमल जाओ कौन नानक गुर परम चुकाया ना कोई मरा नया वह जाया राम करी महला पांचवा जब गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिर तू जीवे फिर ना खाई महाकाल राव कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो बड़ा भाग सत्संग पायो बिन गुर पूरे नहीं उधार भव नानक खाए विचार निराग राम कली महला पांचवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पुकारे ना तू मन खट भी एक आवात बखाना दस अठी मिले को कहया ता भी जोगी भेद न लया किं करी अनूप वाजा जोगिया मत वारो रे रहाओ प्रथम वसा सतका कीड़ा तृतीय मैं किस पया जो तेड़ा तुतिया अर्ध अर्ध समाया एक रहा ता एक दिखाया एक आजूत परोए मणिए काठी पिन पिन पिन पिन पिन तनिए फिरती माला बोबद पाई खिंचा सूता आई थाई चौमै इक्का मठ किया तै बिखड़े थाने अनखड़ किया कोयद कोय द्वारे आया था नानक जोगी का महल कर पाया यहूं किं कुरिया उपवाजा सुन जोगी का मन मीठी लाग रहाओ दूजा राम करी महला पांचवा ताका कर कलाई दिगली नौ नाड़ी सुहाय हस्ती अंबे का कर डंडा तरिया क्या तू जोगी

छोड़ जा चल आज न आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी बाजा नित उदासेरा गुरु गुरु कीता बूझना पाई फिर फिर जोगी आवे जाई जिसनो अनाथ कृपाला रारा सुमारी गुरु गोपाला न मैं किंता न मैं बस्त्र जन नानक जोगी हुआ अस्त्र।

ऐसो रे हर समीठा गुरमुख न विरला डीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पय ने काम तन मन शीतले अगन वारी अंदर रूप प्रगटे संसारी क्या देव जा सब कह तेरा सद बलहार जाऊ लखबेरा तन मन जियो पिंड दे साजा कुर कृपाते नीच नवाजा खोल को हरा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हों तेरा तू मैं मन उठा राम करी महला पंजमा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आव निवारी तिस गुर कहो सत बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनह तुरे सतगुर आओ महिमा जागी गैर गंभीर होए निहाल दे जसतीर जाके बंधन काटे राय सो नर मोर न जोनी पाए जाके अंत प्रगटो आप ताको नाई दू संताप लाल तन तिस पालै परिया सगल कुटां भोजन लै तरिया ना कोई परवना दुदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जग कर देखो आप दयाल को नाम प्रभ मिले रसाल राम करी महला पंजमा तंते चुटकी अपनी तारी प्रभु की आज्ञा लगी प्यारी जुग कर सुमन मेरा मीठा ताए चर जना नो डीठा अमो जानी रे मेरी गई बलाए पुछ गई तृष्ण वारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहो कर कृपा राखो गुर चरणा कुरप कराए हर के चरणा पीसव से जाम टहराने कुरपार ब्रह्म एक ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास ब्रह्म मेरे को सकल निवास ना को दूत नहीं बहराई कल मिल चाले एक भाई जाको गुर हर दिए सुखा ताको बोरन लागे दुखा आपे आप सर्व प्रतिपाल नान करा तो रंग गोपाल राम करी महला पंचमा मुक्ति पड़ता टीका सहत हृदय राम ने पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे अपना कह अपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहा आगह रख सर्ग राम मन की नूंदा दिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाई लोक बेचारा अंध कुमाए खटकर माए अरे असन तोती पावट ग्रह पड़े नित पोती माला बेरा मंगा विभूत ये बिद कोई न तरे उम्मीद सो पंडित गुरु शब्द कुमाए त्रैगुण की ओ सुत्री माए चतुर वेद पूर्ण हरनाए नानक देखी शरणी पाए राम कली महला पांचवा कोट बिगन नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको माया पई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतनो आकर सरंजाम रहा करता राखा कीता कौन कीरी जीतो सगला पौन व्यंत मैं माता की केत कुबरण भरबल जाइए ताके चरण तिन ही किया जब तब ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भक्त सोई कल मैं प्रभान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पै प्रगास सह सुख आस निवास पूरा सतगुरु दिया विश्वास नानक होए दास संदास राम करी महला पांचवा दोषना दीजा काऊ लोग जो कमा मन सोई भोग अपन कर्म आपे ही बंद अपन जमन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास पया पूरे गुर बचनी राव तन तन कल मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सकूर नाम बिना हो जासी दूर परम पूले बाद अहंकारी संग नाई रे सगल पसारी सुख हर कमै दे बिरदानी साख ते भी करत बिहानी हर का नाम अमृत कलम आए ए नदाना जादू पाए नानक गुरु गोविंद जिस दूठा कट कर मैया तिनी डीठा राम कली महला पांचवा पांच शब्द पूर्ण नाद अनहद बाजे चरण समाद केल करन संत हर लोग हर ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावे तै रोग शोक नहीं जन्म मरण रहाओ उहां सिमरै केवल नाम बिरले पावे उ विश्राम भोजन पाहु कीर्तने आधार निचले आसन बेशुमार डिग न डोला कदूना तावे गुर प्रसाद कोय मैल पावे भरम पै मोह न माया जाड़ सुन समाद प्रभु कृपार ताका यंत्र न पारावार आपे गुप्त आपे पासार ताका यंत्र हर हर स्वाद कहना जाई नानक बिस्माद राम करी महला पंजमा एक संग पार

हलत पालत हो दवा सोहेले आचार्य पुरख त्याओ रहाओ ऊर्त बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप पैरी सब हो वै मीत निर्मृत रहो वै चीत सब ते उत्तमे कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तरा हो आधार जन्म जन्म का उतरे भार पूर्ण तरी हो वै आस धमकी कटिय त्रिभास गुर काव दे सुनीज नानक सुख सह समीज राम कली महला पांचवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाए गुमान जिसका तू तिसका सब कोय जिसे रात सदा सुख होय काहे परम प्रमे बेगाने ना बिना कोई काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहो जो जो करा सोई मान ले बिन माले रल हो वै खे तिसका पाना लागे मीठा गुर प्रसाद बिरले मन बूठा वे प्रवाह गोचर आप अड़ पैर मनता को जाप जिस चत आए मिन सह दुखा हलत पलत रहो उजल मुखा कौन कौन उदरे गुण गाय घन न जाई कीम न पाई बूट लो साध संगत रह नानक जिसे प्राप्त करे राम करी महला पांचवा मन माए जाप भगवंत गुर पूराए दिनो मंत मिटे सगल पैत्रास पूर्ण होई आस सबर सेवा गुरुदेवा कीमत किश कह न जाई साचे सच लख पेवा रहो करण करावणे आप तिस कहो सदा मन जाप तिसकी सेवा करनीत सच सह सुख पावे मीत सह मेरा इत पारा फिर मैं दब तपन हारा तिस बिने वरन कोई जिनका राखा सोई कर कृपा हरदास सुनी जै अपने सेव को दर्शन दी जै नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप राम कली महला पंजमा पिरता प्रवासा लोक ठाकुर प्रभु तेरी टेक अवर झूठी सब आस जिंद ठाकुर भेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा होवै पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे राव तुम ही करण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर हुई त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिसी की ओट सदीव जाके की नह जीव सिमरत हर करत निदान रखण हर निदान सर्व की रेण होवी जय आ मिटाई मिली जय अन दिन त्याई नाम सफल नानक काम राम करी महला पंजमा करण करण करीम सबपत प्राल रहीम अल्लाह लख उपार खुद खुदाए बड़ बेशुमार ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रया सर्व ठाई राव जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिदमाय राधो रिह केश गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद मेहरबान मौला तू ही एक पीर पे कमर शेक दिलंका मालक रिहाक कुरान देवते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कटकट आधार वासदेव सब बास दे बस सब ठाए लीला किस लगी न जाए फिर दया कर करण हार भक्त भंग की देर सिरजन हार कौ नानक गुर खोए परम एको अलो पार ब्रह्म राम कली महला पांचवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार तन ते सब नसे कृपाल को जस गाओ प्राणी अगधक साची प्रपूर्ण ज्योति जो समाणी राव तिशना भूख सब नासी संत प्रसाद जपया विनाशी रैन दिन प्रभ से कुमानी हर मिरणय की ए निशानी मिटे जाल होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल परा पूर्वला कर्म बनाया हर के गुण तृष्णा गाया हर के संत सदा प्रवान संत जना मस्तक निशान दास की रेण पाए जे कोय नानक तिसकी परम गत होए राम कली महला पंजमा दर्शन को जाइए कुरबान चरण कमल हृदय तर ध्यान धूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की धर्म तुमल जाए जिस पेट मिटाव मान पारवम शब्द नहीं आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ गुर की कीर्त जपिए हर नाओ गुर की भक्त सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी संसार सुख दुख कदे ना व्यापै तृष्णा भूख मन संतोख शब्द गुरु राजे जब गोविंद पढ़दे सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर दाता दयाल बख्शंद गुर चरणी जा कामन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा राम करी महला पंजमा किस प्रभासा विचरे पवन मूढ़ मुगतरा संगी कवन राम संगीत तिस गत नहीं जान पंच बटवारे सीमित कर मन सो कर सेव जित उदरै मीत गुण गोविंद रविय दिन राति साह संकर मन की प्रीत रहाव जन्म बिहान ओंकार रवाद तृप्त न आवै बिख्या साध परम परम महादुख पाया

प्रथम माखन पाचा दूध मैलो कीनो साबन सूद पहते निरपो डरता फिरा होंदी कौन होंदी हिरा तेही कुतब देही दिशा सगले साज कर जगदीशा ठगण हरण ठगद ठग बिन बखर फिर उठ लाग संत सभा मिल कर गयान सिमरत जात वेद पुराण राम विचार विचारे कोय नानक ताकी परमगत होय राम करी महला पांचवा जो तिस पावै सोथिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभु नाही आन बिया राव पुत कल अतर लक्ष्मी दिसै इन मैं कीहु न संग लिया दिखा ठगौरी खाए पलाना भाया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत बिगुता कर बजोन मैं किरत पया प्रभु कुमाने छोड़े नाही जम दूत करा सो महा पया बोला झूठ कुमावे अबरा तिशना बूझा बहुत हया असाध रोग उपजा संदूखन रे बिना सीमा खया जिना नवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ राखे कर कृपा पार मया राम करी महला पांचवा ऐसा पुरा गुरदेव सहाई या का सिमरन बिरथा ना जाई रहा दर्शन पेगत होए निहाल या की धूर कटा जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार सुहारे सगले तन के या का मस

एको रव रहे अंदर बानी। सुन सुमाद सहज मन राता, तज हो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मान्या, नानक दूजा मेठ समान्या। राम कली मला पहला, साहा गणै न करै विचार, साहे उपर एक ओंकार, जिस गुर मिलै सोई बिद जाणै, गुरमत होए ता हुक्म पछाणै। झूठ ना बोल पांडे सच कहिया, होमै जाए शब्द घर लहिया। रह गण गण जोतक कांडी कीनी, पढ़ै सुनावै तत ना चीनी, सबसे उपर गुर शब्द विचार, और कथनी बदो ना सगली छार। नहावै धोवै पूजै सैला, मिन हर राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिलै प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ। वाचै वाद ना बेद विचारै, आप डुबै क्यों पितरा तारै, कट कट ब्रह्म चीनै जन कोय, सतगुर मिलै त सोजी होय, गणत गणियै सहसा दुख जीयै, गुर की शरण पवै सुख थीयै। कर अपराध शरण हम आया, गुर हर पेटे पुरब कुमाया, गुर शरण न आईयै ब्रह्म न पाईयै, परम पुलाइयै जन्म मर आईयै, जम दरबा दुमरै बेकार, नारद नाम ना शब्द अचार। एक पादे पंडित मिस्र कहावै, दुबदा राते महल ना पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मधे को जन अपार। एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै, एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै, गुरमुख विरली एको जाणिया, आवण जाणा मेठ समाणिया। जिन कह हृदय एक अंकार, सर्व गुणा सर्व गुणी साचा विचार, गुर कै भाणै कर्म कुमावै, नानक साचे साच सुमावै। राम कली मल्ला पहला, हठ निगरो कर काया छीजै, वर्त तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सर अवर न पूजै, गुरसेव मना हर जन संग कीजै, जम जंदार जो नहीं सकै, सरपन डस न सकै, हर का रस पीजै। रहो वाद पड़ै रागी जग पीजै, त्रै गुण बिखिया जन मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चाड़ सुपवन सिंघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अग्न क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ पर मीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का को दीजै, अन ना खाए देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान त्रिपत नहीं थीजै, मनमुख जन्मै जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, उंदर दुंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभ कीजै। राम कली मल्ला पहला, अंतर उत्पुज अवरना कोई, जो कहिया सो प्रभ ते होई, जुकै जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लो अवरना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गैर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लागै जम तीर। रहो नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैसै डूगर अस्थान, नाम बिसार पचै अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावै दरगह मान, हठ अहंकार करै नहीं पावै, पाठ पढ़ै ले लोक सुनावै, तीर्थ भरमस ब्याद ना जावै, नाम बिना कैसे सुख पावै, जतन करै बिंद किवै ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बाधो लह सजाई, बिन नावै जियो जल बल जाई, सिद साध केते मुन देवा, हठ निगरै ना त्रिपतावै पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अभिमान पेवा, कर्म मिलै पावै सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुभाओ, तुम ते उपजियो भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ, हो मैं गर्व जाए मन भीजै, झूठ ना पावस पाखंड कीनै, बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत विचार। राम कली मल्ला पहला, जो आया त्यो जावै बोरे, जो जन्मे त्यो मरण।

जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उद्भावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरे आथिया नानक जप भगवंत छंत रुत सरस बसंत मा चेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलया मौलिया मन तन सास जियो घर नाह मिलने चल।

छंत रुत ससियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्स पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेव्या हर डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेव्या पाओ भक्त गोविंद वांछत जम न सकै जो जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तैन प्रेम बिछो जियो सलोक हर धन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रै प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम पने छंत हिम कर रुत मन भावंती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मंत आए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिन त्रिपवन पए हरे

तीर छंत चरण बिराजत सब ऊपरे मिटया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बीसरै तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीशरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक मया धारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जनचित ओंकार सैल जुग भये ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओनम अखर सुनो विचार ओनम अखर त्रिभवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वास्त प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंतर अंत निरंतर साचा समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म तरे धर्मा पुर गुणकारी मन धीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा धन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाना कह जाना गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिया गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पियाया एको एक है सब कोई हो मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणै एकर महल सन्यापै प्रभ नेड़ै।

विगुते एव तब फिर पछताई, एक सरेवै ता गत मित पावै आवण जान रहाई। एक अचार रंग एक रूप, पौन पानी अग्नि असरूप। एको भवर पवै त्यो लोए, एको बूजै सूजै पत होए। ज्ञान ध्यान ले समसर रहै, गुरमुख एक विरला को लहै। जिसनो दे कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वारा आख सुनाए। ऊरम धूरम जोत उजाला, तीन भवन मैं गुर गोपाला। उगव्या असरूप दिखावै, कर कृपा अपने कर आवै। ऊन बरसै नीजर तारा, उत्तम शब्द सवारन हारा। इस एके का जाने पेओ, आपे करता आपे देओ। उगवै सूर असुर संगारै, ऊचो देख शब्द बीचारै। ऊपर आद अंत तिहलोए, आपे करै कथै सुनै सोए। ओ बिधाता मन तन दे, ओ बिधाता मन मुख सोए। प्रभ जग जीवन अवर न कोए, नानक नाम रते पत होए। राजन राम रवै हितकार, रण मै लूजै मनुआ मार। रात दिनांत रहै रंग राता, तीन भवन जुग चारे जाता। जिन जाता सो तिस ही जेहा, आत निर्मायल सी जिस देहा। रैसी राम

एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव है पतमती। लाज मरंती मर गई घूंघट घूंघट खोल चली, सास देवानी बावरी सिरके शंख टली, प्रेम बुलाई रली स्यों, मन में शब्द आनंद।

वैर जन मर नहीं तन दा तैर जो दी सैसो आपे आप उपाय आपे कट थाप आप गोचर तंदै लोई जो जगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम बहुना मुक्त किव होई। विर नावै विरोध शरीर क्यों न मिलै काटै मन पीर वाट वटाऊ आवै जाए क्याले आया क्या पल्लै पाए। विर नावै टोटा सब थाए लाहा मिलै जा दे बुझाए। वणज व्यापार वणजै व्यापारी विर नावै कैसी पत सारी गुण विचारे ज्ञानी सोए। गुण मैं ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार। अगम अगोचर कीमत नहीं पाए ता मिलिया जाले मिलाए। गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया मीत। काम क्रोध काया को गालै काम क्रोध काया को गालै जो कंचन सोहागा ढालै कस कस वटी सह सुताओ नदर सराफ वनी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकार कसाई कर कर तय करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किछ कह न जाई। खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखै सब कोए खरा रतन जुग चारे होए। खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरण मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतरवास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाए गुर प्रसाद रहै लिवलाए। गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाद सुगोनी हर नाम चेत फिर पवै न जूनी गुरमति सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर थाकी बहुत तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुर ते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस ढूंढ करै मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया। गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तुलावै तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक। गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावै पार। चंचल चीत न रहे ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतित ही दिस।

जागत जागर हाथ दुपावा, जा तू मिलै ता तुझै समावा, जय जय कारज पो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस इक्कीस, झख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरै देखै परमाद, जन्म मोए नहीं जीवन आसा, आए चले पे आस निराशा, चुर चुर झख माटी रल जाए, काल ना चंपै हर गुण गाए, पाई नवनिध हर कै नाए, आपे देवै सहज सुभाए, ज्ञानो बोलै आपे बूझै, आपे समझै आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साच अखोट, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो, नानक गुरमत साच समावो, टूटै नेहो के बोलै सही, टूटै बाद दोहूं दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुरमत पर हर छाडी ढोल, टूटै गांठ पड़ै विचार, गुर शब्दी कर कारज सार, लाहा साच ना आवै तोटा, त्रिभवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाए, ठैक मोई अवगुण पछताए, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ेयार, पर कर जाती ठाक रहाई, महल बुलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सोहा

गण ठाकुर तारी। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर श्रृंगार, दापन तन सुख नहीं बिन डर बैठी डार। डरप मुई घर अपना डिठी कंत सजान, डर रखिया गुर अपना निरपा नाम बखान। डूंगर

मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पे पेटे गुर गोविंद। बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार, सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। नाना करत ना छूटी है विण गुण जंपुर जाहे, ना तिस एहो ना ओ है अवगुण फिर पछताए। ना तिस गया ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, विरना वह निरभौ कहा क्या जाना अभिमान। थाक रही किव अपड़ा हाथ नहीं ना पार, ना साजन से रंगले किस पै करी पुकार। नानक प्रे प्रे जे करी मिले मिलन हार, जिन विछोड़ी सो मेल सी गुर कै हेत अपार। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा, पर हर पाप पछाणै आप, नात सोग विजोग संताप। नरक पढ़न तो क्यों रहै क्यों बंचै जमकाल, क्यों आवण जाना विसरै झूठ बुरा खै काल। मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे, विरना वै क्यों छूटी है पापे पचै पचाहे। फिर फाही फासै कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ, फाथा चोग चुगै नहीं बूझै सतगुर मिलै ता आखी सूझै। ज्यों मछली फाती जम जाल विण गुर दाते मुक्त न पाल, फिर आवै फिर जाए एक रंग रचै रहै लिवलाए। इव छूटै फिर फास न पाए बीरा बीरा कर रही बीर गए, पए बैराए बीर चले घर अपने बहन बिरै जल जाए। बाबल क्या कर बेटड़ी बाली वाले ने, जे लोड़ वर कामणी सतगुर सेवै ते, बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मिले। ठाकुर हाथ बढ़ाइयां जय पावै तै दे, वाणी बिरलो विचार सी जे को नदर जे को गुरमुख होए। ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, बाणी बिरलो विचार सी जे गुर जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पन पन घड़ी है खड़ खड़ भजै ढाहे उसारै, उसरे ढाहे ढाहै सर पर सुख है पी भर भुख है समरथ वे परवाह है। भरम भुलाने पए दीवाने विण भागा क्या पाई है, गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी जिन खिंचै तिन जाइयै। हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछोताइए, पब्बै पालै गुरमुख बूजै ता निज कर वासा पाइयै। पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरिए, गुर प्रसादी आपो चीनै जीव त्या इव मरिए। माया

सो कह रही है बाले कह आवो कह जाहो नानक बोला सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो। घट घट बैस निरंतर रही है चल सतगुर पाए सहजे आए हुक्म सदाए नानक सदा रजाए आसन बैसर थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कही है क्यों कर पाईऐ पारो चरपट बोलै औदू नानक देहो सच्चा बिचारो आपे आखै आपे समझै तिसक्या उत्तर दीजै साच कहो हो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै। जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई न साणे सुरत शब्द पव सागर तरिया नानक नाम बखाणे। रह है एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो निराशो अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारो रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाईऐ गुरुद्वारो। ए मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम आधारो आपे मेल मिलाए करता लागै साच प्यारो। हट्टी बाटी रह निराले रूख बिरख उदयाने कंद मूल आहारो खाइयै औदू बोलै ग्याने। तीर्थ नहाइया सुख फल पाइया मैल न लागै काई गोरख पूत लोहारी पा बोलै जोग जगत बिदसाई। हाटी बाटी नींद न आवै पर कर चेतना डोलाई बनावै मन टीक न टिकई नानक भूख न जाई। हट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सच वापारो खंडित निंद्रा अल्प आहारंग नानक तत् बिचारो दर्शन पे करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहड़ चोट ना खाइए नानक बोलै गुरमुख बूझै जोग जुगत एव पाइए। अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हम मैं ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारै गुर के शब्द सो समझ परी खिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारै एक हरी। साचा साहिब साची नाई परख है गुर की बात खरी उंदो खप्पर पंच पू टोपी काया कड़ासन मांजा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल। कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बाहर जुगता कवन सो आवै कवन सो जाए कवन सो त्रिभवन रहे असमाए। घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सुजुगता बिन मनमुख बिनसै आवै जाए। नानक गुरमुख साच समाए क्यों कर बादा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा यो तत् विचारै सो गुरु हमारा। दुरमत बादा सरपन खादा मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिलै अंधेरा जाए। नानक होमै मेट समाए सुन निरंतर दी जय बंद उडै न हंसा पड़ै न कंध सहज गुफा कर जाणै साचा। नानक साचे भावै साचा किस कारण गृह तजियो उदासी किस कारण एहो भेख निवासी किस वखर के तुम बण जारे क्यों कर साथ लंघा वो पारे गुरमुख खोजत भय उदासी दर्शन कह ताई भेख निवासी साच वखर के तुम के हम बन जा रे। नानक गुरमुख उतरस पारे कित बिद पुरखा जन्म वटाया काहे को तुझ एह मन लाया कित बिद आसा मनशा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइया सार। नानक साचा करो विचार सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते हूँ मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रैगुण मेटे खाई है सार। नानक तारे तारण हार आदि को कवन विचार कथियले सुन कहा कर वासो ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइले क्यों निर्भौ कर जाइये सहज संतोख का आसन जाना क्यों छेदे बैराई है गुर कै शब्द होमे बिख मारै तानिज कर हो वै वासो जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणै नानक ताका दासो। कहाँ ते आवै कहाँ इहो जावै कहाँ इहो रह समाई ए शब्द को जो अर्थ आवै तिस गुर तिल न तुमाई।

आवै गत मित शब्द पाई आद को बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया कल पत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारियले काट काट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सुखोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिया सोई अवगतो निर्माल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सत गुर परचै परम पद पाइयै सच शब्द समाय लिया एको को सच एका जाणै होमै दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै अंतर जाणै सर्व दया नानक ताको मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जियां सचा उपजै साच समावै साचे सूचे एक मया झूठे आवै ठबर न पावै दूजै आवा गौण पया आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखै बख्श लिया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायण विसरिया सो बूझै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पया नानक तारे तारन हारा हमें दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जमकी कान पर कर जो है हाने हान मन मुख भरम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द न चीनै लवै कुबाण नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी कड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाइयै लख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निब है सा परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाइयै शब्द आचार शब्द भेद जाणै जाणाई नानक होमै जाल समाई गुरमुख धरती साचा साजी तिसमै उपत खपत सुबाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै बिना नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिया सच सुद्धि गुरमुख सर अप सर विद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे

सिटी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल। हरावत की खबर गुर पाई मन तो आनंदो आनंद पहे। हरावत सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पहे। गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा मन मिल सत्संगत शुभवंती सुन अकत कथा सुखवंती सब किलविक पाप लहंती। हर हो लिखत लिखत लिखंती राव हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पछंती। जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै कुरबानती। हर अकत कथा का जिस रस चाख्या तिस जन सब भूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन तृप्त है जप हर हर हर होवंती। लट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल। सो हर जन है बल बाल हर हो मेल निहाल राव। हर का मार्ग गुरसंत बतायो गुर चाल दिखाली हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो ने कपट कमावो हर की हर गाल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए। जिना हर प्रभु जान्यो मेरा नाल जन नानक कौ मत हर प्रभ दीनी। हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हो क्या जाना क्या पावे मन प्यास बहुत दर्शावे। रहा सोई ज्ञानी सोई जानते रहा जिस ऊपर रुचावे। कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तो त्यावे। कवन जोग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुणी रिझावे। सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे। साई मत साई बुद्ध सियाणप जित निमिखना प्रभु बिसरावे। संत संग लग हे सुख पायो हर गुण सद ही गावे। देखियो अचर्ज महा मंगल रूप किच आन नहीं दिस्टावे। कहो नानक मोर्चा गुर लायो तैं गर्भ जोन कह आवे। नट नारायण महला पंजवा दो पदेक ओंकार सतगुर प्रसाद। उलाहणो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो कियो राव। आग्या मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तो हारो जियो। इहां हुआ हर तुम ही ए गुरते मंत्र जड़ियो। जब ते जान पाई ए बाता तब कुशल खेम सब थियो। साह संग नानक प्रगासियो आन नाही रे बियो। नट महला चौथ पंजवा जाको पही तुम्हारी धीर। जम की त्रास मिटी ही सुख पाया निकसी हौमे पीर। हाव तपत बुझानी अमृत बानी तृप्त ज्यों बार खीर। मात पिता साजन संत मेरे संत सखाई वीर। खुले ब्रह्म पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर। विषम पहे नानक जस गावत ठाकुर गुणी गहीर। नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो। आठ पैर जन के संग बसियो मन ते नाहे बिसारे रहाव। वरन चेह नाई किच पेखियो दास का कुल ना बिचारियो। कर कृपा नानक हर दियो सहज सुभाहे सवारियो। महा बिखम अगन का सागर तिस्ते

मूर्त एको प्रभु ठाकुर प्रभु एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम और तारे हर हर कथा बनी अत मीठी जो गूंगा गट कस मारे रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे धर्म राय जम नेड़ न आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए नामे बिन सो बिरथा सास विकारे कृपा कृपा कर दीन प्रसन्नी मोको हजन मेल प्यारे नानक दासन दास कहते हम दासन के पनिहारे नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द गुरतारे राव सतगुरु नाम दृढ़ाए अत मिठा मैलागर मलगारे नामे सुरद बजी है दह दिस हर मुस्की मुस्क गंदारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मिठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निसारे विवेक गुरु गुरु समदर्शी इस मिलिए संक उतारे सतगुर मिले परम पद पाया हाँ सतगुर कह बलिहारे पाखंड कर कर परमे लोभ पाखंड जग बुरे आरे हालत पद दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन स आल जाल समाले बिख माया के विस्तारे आई रैन पई सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूट जमाया सब कूड़े के खलवारे साकत नर सब भूख पुखाने दर ठांडे जम जंदारे मन कर चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द बिचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लागवारे जगन्नाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नत हारे नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे सतगुर ज्ञान मजन है निको मिल कल मल पाप उतारे रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई पड़ सुआ गणक उदारे परस न परस पये कुबजाको लै बैकुंठ सिदारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाहे पावनी जम कंकर मार बिदारे मानुक कथ है कथ लोक सुनावे जो बोले सो ना बिचारे सत्संगत मिले तनता आवे हर राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है सावत तब लग किछ ना समारे जब कर मंदर आन लगानी कड कूप कडे पनिहारे साकत स्यो मन मेल न करियो जिन हर हर नाम बिसारे साकत बचन विश्वा ज्यो डसिए तज साकत परे परारे जाग लग लग पीत बहु पीत लगाई लग साधु संग द्वारे गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन प्रचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे जैसा रंग देह सो होवे क्या नानक जंत विचारे नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे जो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ प्रभु के सेवक बहुत अत नीके मन शरदा कर हरतारे मेरे प्रभु शरदा भक्त मन पावे जन की पैज सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरख एक नदरी आवे सब एक नद निहारे हर प्रभु ठाकुर रवे आ सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर की रे कारे अंतर बास बहुत मुस्काई परम भूला मृग सिंगारे बन बन टूंड टूंड फिर ताकी गुरु पूरे कर निस्तारे बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रताख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे ज्यो जन चंद्रहास खुदया दृष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जारे प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भक्त दड़ाए जन पीछे जग निसारे आपन आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्य सवारे जन नानक आपे आप सब भरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उबारे जो पकड़ द्रौपदी

यो जास नाम दुख बिन से सुख क्यों विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कह कर सगले समाहे जिससे बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कह दीवान बिह मोहताज नहीं किछ कान सब किछ करना अपने आप रे मन मेरे तूता को जाप सा संगत को हो बलिहार जास मिल हो वे उधार नाम संग मंतने रात नानो को प्रव करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर सम्राथ की शरणा जियो पिंड तन रास मेरी प्रव एक कारण करना रहा सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवन का मूल रब रहा सर्वत ठाई सुख मो असूल आल जाल बिकार तज सब हर गुना नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजम प्रभ समराथ देव अपार कौन जाने चलित तेरे किछ अंत नाही पार हाव एक खिने थाप उथाप दा कड़ पन कर निहार जेत कीन उपार्जना प्रभ दान देह दातार हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ लेहो पौजल बिखम ते जन नानक साध बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बंद भगत बशल सदा सदा किरपाल रहाव आद अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहो सगल मंडल एक स्वामी सोए कर्ण हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए ना सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा वाणी भक्त नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओहे राम बेन बाजे मधुर मधुर तुन अनहत गाजे रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण ओडे कामली तन तन तू माता देव की जह ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड वृंदावना जह खेले श्री नारायणा बेन बजावे गोतन चरे नामे का स्वामी आनंद करे मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो बिठ लाए रहाओ कर तरे चकर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उदाहरियले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले गौतम नार अहिल्या तारी पावन के तक तारियले ऐसा अदम अजात नाम देव तो शरणागत आयले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहुना नारे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम पसमाना रे एकल चिंता राख अनंता औरत जो सब आसारे पनवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे राग मारू महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद श्लोक साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर नानक शरण तुहारियां पेखो सदा हजूर शब्द पिछो राती संदड़ा नाम खसम कालहे खेमे शतर सराईचे दिसन रथ पीड़े जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले बाबा मैं कर्महीन कुड़ियार नाम न पाया तेरा अंधा परम पूला मन मेरा रहा साध किते दुख पर फुड़े पूर्व लिखे माए सुख थोड़े दुख अगले दुख है दुख बेहाए बिछड़िया का क्या बिछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो सालाही है जिन कर देखिया मेल संजोगी मेला वड़ा इन तन कीते भोग बिजोगी मिल बिछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत बड़ियाई मिल माया सुत गवाई मूर्ख मन काहे कर से माना उठ चलना खस में पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहना कोई किछ खाजे किछ धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सच काया पट हंडाए फुरमाइस बहुत चलाए कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे
ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ ਬੇੜਾ ਜੀਓ ਚੜਾਊ ਕਹਨ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਕਾਹੂ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ ਤੋਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਅੰਤ ਹਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਵਰਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ

दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मुड़े कवन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तिनेहा एक नाम अमृत ओ देवे तो नानक तिष्टस देहा मारू महला पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे दादर तू कव है न जानस रे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे रहा बस जल नित ना वस्त अनियल मेर चचा गुण रे चांद कुमुदनी दूरो निवसस अनपो कारण रे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कबहो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग बसे जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे एक पाखंडी नाम नराचे एक हर हर चरनी रे पूर्व लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे मारू महला पहला सलोक पति पुनीत असंख होए हर चरनी मन लाग अरसरत तीर्थ नाम परम नानक जिस मस्तक पाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सुहेली जो मैं बेदन सा किस आखा माई हर बिन जियो न रहे कैसे राखा माई रहाओ हों दुहागन खरी रिंजाणी गया स जोगन तन पछताणी तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रबो सुनेही मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुपागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतराई साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ माँ लाली प्यो लाला मेरा हों लाले का जाया लाली नाचे लाला गावे भगत करो तेरी राया पीहे त पानी आनी मीरा खाहे त पीसन जाओ पखा फेरी पैर मलोवा जब तरहा तेरा नाऊ लून हरामी नानक लाला बख्शे तुद बड़े आई आज गादी दया पद दाता तुद बिन मुक्त ना पाई मारू महला पहला कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा पिया दीवाना शाह का नानक बोराना हों हर बिन अवना जाना रहा तो देवाना जानिए जा पै देवाना होए एक ही साहिब बहरा दूजा अवना जाने कोए तो देवाना जानिए जा एका कार कमाए हुक्म पछाने खसम का दूजी अवर स्याण पकाए तो देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप को अवर भला संसार मारू महला पहला एह तन सर्व रहा भरपूर मनुख फिरे से जाने दूर सो तन बखर नाम हृदय समा हमारे जिस तू देह तिसे निस्तारे रहाओ ना यह तन जले ना तस्कर ले जाए ना यह तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अंदिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परम गत पाई पंत नानक अकथ की कथा सुनाए सतगुर मिले त एह तन पाए मारू महला पहला सूर सर सोस लै सोम सर पोख लै जुगत कर मरत सो संबंध कीजे मीन की चपल स्यो जुगत मन राखिए उडह नह हंस नह कंध छीजे मुड़े कायचे परम पुला नह चीनिया परमानंद बैरागी रहाव अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै प्रात तज छोड़ तो अपहो पीजे मीन की चपल स्यो जुगत मन राखिए उडह नह हंस नह कंध छीजे पंत नानक जनो रवे जे हर मनु मन पवन स्यो अमृत पीजे मीन की चपल स्यो जुगत मन राखिए उडै नह हंस नह कंध छीजे मारू महला पहला माया मोइना मन मुआ सर लहरी में मत बोहित जल सिर तर टिके साचा बखर जित मानक मन में मन मार सी सच न लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहिब दूर ना देख सर्व जोत जग जीव ना सेसर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु ऋखि मुनि शंकर इंद्र तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जती सन्यासी गुरपुरे बिचारी बिन सेवा फल कभी न पा